0: Jack. Lots of people tell me that they won't miss the rock and roll smorgasbord program.
1: That's right, Dominic. It's been on air since 1993 from 6 p.m. till 9 p.m. and it features a crazy bunch, including John Robb, Lord Pig and the Supervisor. They still play vinyl records, they present the latest news and they do movie reviews too. Even an original 78 RPM disc is played every week.
0: Yeah, would you believe they've been on air since 1993? It really is worth listening to all those classic rock tracks.
1: Indeed. That's the Rock and Roll Smorgasbord each Monday from 6 till 9 p.m. on Your Sound, Your Community, Alive 90.5.
2: You're listening to the sound of Alive 90.5. Alive 90.5.
3: नमस्ते और अभी मेरा समय आ चुका है आपसे विदा लेने का आज के लिए मिलेंगे अगले हफ्ते. अगले हफ्ते तो राखी स्पेशल है हमारा, तो हम थोड़ा बहुत भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, इनके जो रिश्ते हैं, प्यारे से रिश्ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताएं. आज बहुत लोगों की बातचीत आप तक मैं लेके आई हूँ, तो होपफुली आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और होपफुली मैंने थोड़ी सी इंडिया की याद दिला दी आपको. तो मुझे जरूर बताएं. आप मुझे अलाइव के वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे अगर आप सोशल मीडिया में जानते हैं वीना शशि कुमार तो मुझे वैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर अलाइव को टेक्स्ट कर सकते हैं 0405905905 पे. तो आज लिए इतना ही. आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ. थैंक यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल सैटरडे एंड अ ब्यूटीफुल संडे. सी यू नेक्स्ट वीक.